मैं गोंग और मैं परेशी जी ऐसे जी बोला है मुरुकु लो मां अब मां कुलो ना मां गिमां जी बाबा मां यू रीड ऐसे गए वे ओयो